0: अचंभे के ही नहीं नहीं ला
1: कौन को गायो है रंगम उनको रेमोन
0: वाव
1: नहीं ना ये पंता नहीं ना कुछ
0: ये ओके
1: नहीं ना गंभीर ये सब को नहीं ना ला
0: ये नहीं चुप है
1: क्या नहीं ये लड़ फल जामा
0: अमीन ला
1: इनको जब लोग सिंहों से तो ये नहीं आ सकते लोग सिंहों
0: अमीन ला
1: रुना मम्मी ला रे
0: हाँ नहीं ला रे
1: नंग बो करे नंग बो का काफ
0: वाव वाव
1: यार का अमलोने अमलो नहर
0: ओके
1: बिन्या नहीं टुंडा
0: हाँ
1: बिल्कुल बिन्या नहीं नहरो
0: वाव
1: मुन यार का अम इंशाल्लाह
0: निशान
1: कौन यार ये अते लूने यार लगा
0: अमीन वाय
1: ग्रेट मैन अब संभालना इंशाल्लाह
0: जरे जफ वाय
1: अगर एक जफ वाय
0: यार जफ
1: एंडो यूं को फर
0: अमीन अल्लाह
1: कुछ एंडो जामा एंगा फना ना जामा
0: अमीन अमीन अमीन
1: यार एक अम जामा ये नहीं यार जामा कैन मुन जामा
0: अमीन अल्लाह
1: सोला जरे जफ
0: जरे Nesan tinu yu baike adiko krem diko santa. Nyonyo diwa fans club bi. Nesan nyom yep nak bena lany. Ku nyow rek da ngay nyow. Indi say nyan. Indi say waxtan. Nyom boko konak. Di fatale ko dembo. Lola gay wax de dala sek mona anda tala ñoo mona anda Nisa Aleikum assalam Dawda Nafio koy
2: ñay né rek ñay kulé jaxé ñay nañu biu men
0: in wé men rek nambina
2: ay né rek koy
0: jam som kay na fo ngol né
2: ah fo ngol né naka ko xé foga da me def na ndiki
0: ah
2: foga da me def na ndiki kay
0: kon koy anda me ndiki ñu sa do déti del
2: ah nga ala me def na kañ mom
0: ah
2: ndiki sa délu déti dé
0: ko lég né rano dét kanu ndi arwa ngey ko xala fak
2: da ko xex nga la rek mom ci moro gote magi
0: alhamdullilah
2: ah ci moro gote magi wallahi
0: jokka jall way
2: alhamdullilah
0: jokka jall
2: jam rek lay dara jere way
0: jokka jall jokka
2: alhamdullilah ana wéro rajo le
0: e ma kan rajo le waxe tok sa de
2: ah okay ci ngi slide de maga dit
0: okay 92.1 da maga